ये आकाशवाणी ले की आवाज़ है। सुबह के 7:32 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए श्रीमती केसंग डोलमा से प्रोग्राम रोशनी।

एक देश का विकास और खुशहाली वहाँ के नागरिकों का आपसी एकता, समानता, सद्भावना तथा सौहार्द पर निर्भर करती है। सच ही है कि हमारा भारत सबसे निराला, सबसे प्यारा, जो समय के थपेड़ों को खाता हुआ भी निरंतर गतिशील है। हमारे भारत की भूमि स्वर्ग से भी महान है। लहराता सागर इसके चरण चूमता है, गगनचुंबी हिमालय इसके मुकुट हैं, गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसके गले के हार हैं। ऐसा हो ही क्यों ना, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति है ही ऐसी गौरवपूर्ण और महिमा मंडल। भारत ही है जिसने विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे समृद्ध देश पर बाहरी आक्रमण हुए, इसे लूटने तथा नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन जब देश को बचाने की बात आई तो लोग एकता के बंधन में बंधकर देश की रक्षा के लिए एकत्र हो गए तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले वीर तथा वीरांगनाओं ने देश पर आंच नहीं आने दिया। देश के इस इतिहास पर गर्व करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सफलता प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने समाज को नहीं भूलना चाहिए जिस मिट्टी पर हमने जन्म लिया है। यदि निगाहें लक्ष्य पर हो और कदम हो राह पर, तो कोई ऐसा राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। इतनी विविधताएं होते हुए भी हम एकता के सूत्र में बंधे हैं। यद्यपि कुछ शैतानी दिमागी लोग किसी भी चीज को मुद्दा बनाकर समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश करती रहती है, और इसका राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ना तो तय है, क्योंकि इतनी विविधताएं पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में अगर एक खास वर्ग अपनी चीजों को सर्वोत्तम कहने लगे और दूसरों को अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए हिंसा का सहारा लें, तो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को चोट पहुंचना तो तय है। लेकिन उस वक्त हमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सोचना होगा कि हम सब मानव हैं। अगर भगवान ने किसी को श्रेष्ठ तथा किसी को बुरा बनाया होता, तो सभी वर्गों के मनुष्य अलग अलग नाम के क्यों नहीं हैं? किसी का खून लाल, किसी का खून पीला और किसी का और रंग क्यों नहीं है? हमारा भारत श्रेष्ठ भारत यह देश ही नहीं, कई देशों का संगम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महान देश के नागरिक हैं। अभी तक हमने देश को जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र के नाम पर बंटने से रोका है, और कोई भी हमारे प्यारे मातृभूमि को बांट नहीं सकेगा, क्योंकि हम सब एक ही माँ के संतान हैं। जी हाँ, हम भारत माँ के संतान हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, पर अगर भरोसा अपने आप पर है तो तकदीर में वही लिखोगे जो आप चाहोगे। अनेकता में एकता, भारत की यही विशेषता। भिन्न प्रकार के हैं जहाँ लोग, भारत में यह अभिन्न योग। जहाँ रहे अनेकता में एकता, वहाँ के लोगों में है परिपक्वता। अनेकता में एकता अपनाते चलो, देश को एक सूत्र में बांधते चलो।

अभी आप श्रीमती केसंग डोलमा से प्रोग्राम रोशनी सुन रहे थे। आजे आकाशवाणी लेने चुन चिकता दो छो दुन तंग कर्मा सुम छो दुन छादो कासतंग आजे धीरेंगे मेडिक्रम को निस्कोर साना चाहता।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
5: We signed this year a free trade agreement with Europe.
6: हमने यूरोप के साथ मुक्त

0: व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026। भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma.
6: The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding, MOU, with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
7: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
6: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
8: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
6: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
9: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for a decade, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryu said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
6: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
10: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
6: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts, and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jayashankar said, the impact of the conflicts extend far beyond the regions where they occur. He said there is broad agreement that the international community must continue efforts to mitigate the consequences of conflicts and create conditions conducive to diplomacy. On energy security, Dr. Jayashankar reiterated that India's energy choices are guided by national interest and that purchases are made on considerations of affordability and availability.
11: Today, our largest oil supplier, little less than 40%, is Russia. Our largest gas supply is the United States. And that was not the case till the 28th of February of this year. The main supplier was Qatar. So what is happening is the world is also de-risking on the region. People are looking for alternative energy sources and saying, okay, I'm prepared to buy at longer distance, maybe at a higher cost, but there is a greater security about it, predictability about it. So what I see in a way is that the global energy scenario will fundamentally change after this.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the measures taken by the government towards positioning India as a global leader through its foreign policy. A report.
2: Over the last 12 years, India emerged as a formidable global leader driven by bold initiatives that fuse ambition with action. Prime Minister Narendra Modi's leadership has anchored these efforts in responsibility and inclusivity, ensuring India's voice resonates across global platforms. India strengthened its old relationship while making new friends, infusing fresh energy into India's foreign policy while keeping the principle of India first supreme. Humanitarian assistance and disaster relief operations are a vital part of India's global engagement. Cyclone Dithwa made landfall on the eastern coast of Sri Lanka in November 2025, leaving hundreds dead, thousands displaced, and critical infrastructure damaged. Standing in solidarity with the people of Sri Lanka, India launched Operation Sagar Bandhu to provide immediate humanitarian assistance and disaster relief to Sri Lanka. The effort brought together the Indian Navy, Air Force, Army, and disaster response team in a coordinated rescue and relief operation. India provided comprehensive support to Sri Lanka, including immediate relief supplies, medical aid, search and rescue assistance, and restoration of damaged infrastructure. Thanking the Indian government, Sri Lanka's Deputy Minister for Ports and Civil Aviation, Janith Ruwan Kodithuwakku, stated that India had shown immense warmth and solidarity toward the people of Sri Lanka.
12: We are very thankful to India because since the day this Dithwa happened, opened their warm heart to us, and we really appreciate their help. We are very good friend of India, and we would like to extend our thanks to Indian government and the Indian people on behalf of Sri Lankan government and the Sri Lankan people.
2: The major highlight of India's foreign policy came during the COVID-19 crisis. India launched the Vaccine Maitri Initiative as a testament to its human-centric diplomacy. Since January 2021, India has supplied over 30.12 crore vaccine doses to 99 countries and two UN bodies. This included 1.51 crore doses gifted to over 50 nations and 5.2 crore doses through COVAX mechanism. Talking to Akashvani News, Dr. Jyotishko Biswas, a physiotherapist and yoga teacher based in Bangladesh, said that the rapid dispatch of the vaccines from India was a profound gesture of goodwill.
3: India जो किया हमारे लिए वैक्सीन
13: एट दैट टाइम इंडिया मेड अ फास्ट रिस्पांस एंड सेंड द वैक्सीन टू अस आई आल्सो टुक दैट वैक्सीन इट वाज वेरी गुड फॉर अस आवर रिलेटिव्स एंड ऑल द कंट्रीमैन इट वाज अ वेरी नाइस गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड सो फॉर दिस वी आर वेरी ग्रेटफुल बेस्ट विशेस टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल मेनी मेनी थैंक्स टू इंडिया
3: इंडिया गवर्नमेंट एंड पीपल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: इन द लास्ट 12 इयर्स इंडिया हैज स्टेप्ड अप एज अ ग्लोबल लीडर टू इंपैक्ट initiative like Vaccine Maitri and Operation Sagar Bandhu that blend vision with execution. Its commitment to humanitarian aid and regional partnership is anchored in the civilization ethos of Vasudev Kutumbakam. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: U.S. President Donald Trump has called off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. The move comes hours after he threatened to escalate the war by seizing control of Iran's oil industry. In a social media post, Mr. Trump credited progress in discussions with high-level Iranian leadership as cause for the sudden change. He also suggested that progress has been made in talks to extend the fragile ceasefire. President Trump also said that a deal to end the war with Iran is nearly complete and is expected to be signed over the weekend in Europe. He made these remarks at the Oval Office in the White House yesterday. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales with the finals set to take place on the 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. India will start their campaign against arch-rivals Pakistan on Sunday. Harmanpreet Kaur-led Indian side will be looking to create history as they aim for their first Women's T20 World Cup title. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. Julian Quiñones scored Mexico's opening goal in the 9th minute to give the hosts a lead. Later, Raul Jimenez scored in the 67th minute, making it 2-0 for Mexico. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
14: Thank you, Sunil. In a landmark judgment, the Supreme Court of India's call homemakers, nation builders, and quantified their monthly care as 30,000 rupees, reports the Tribune. Union Home Minister Amit Shah has been quoted in the Pioneer as saying that the Armed Forces Special Powers Act will be withdrawn from the entire Northeast next year, barring one or two states. In its editorial piece titled Green Energy Can't Yet Bend Climate Curve, the Indian Express argues that despite record growth in renewable energy, the world is still failing to slow global warming because major sectors remain dependent on fossil fuels. The paper says the clean energy transition must be accompanied by deeper industrial change, stronger policy support, technological innovation and international cooperation. Anthropic CEO Dario Amodei has sought serious and binding artificial intelligence rules and calls for mandatory testing and government powers to block risky systems, reports Financial Express. And finally, the Asian Age has quoted U.S. agency NOAA as confirming that the weather phenomenon El Nino has begun and will intensify into the end of the year, potentially to historic strength. And with that, it's back to you, Sunil.
6: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: Gaje Akashwani Leni Shunjiktain, Sngato Chusot, Getang Petsontong, Kasata Galtras Bakula Rinpoche, Skutsetat Nam Degrim Sanchez Lapolin, Degrim Pulkan, Padmashri, Ngurup Nam Gel.

0: Dasang ishrange tsiring churul tang chapan isal khane lori kisana chans. Nga zhe Akashvani le nishun jik tang inis nga to chuzo gu chadu. Kasa ta tutsu tsa pigas tingne Ladakh sana nasul sana chad.
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

दासिंगी चुरंगे कस्मे वादे फिल्मेलो आशा भोसले ने सनाजांस फिल्मे लुटिक्रिम बिना कसता छोटी सी बात फिल्मेलो यसुदास तंग आशा भोसले ने सनाजांत लुर सुम खन योगे शलुयांस रिखन सलील चौधरी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

दासंगी रंगे एन इवनिंग इन पेरिस फिल्मेलो मोहम्मद रफी तंग हर्षा भोसले ने सना जांच फिल्मेलो टिग्री में स्थिंग जुग पेखा कसता मासूम फिल्मेलो भूपेंद्र तंग सुरेश वारेकर ने सना जांच लुर सुमखन गुलजार या लुयांग श्रीखन आर डी बर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से

अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland, Dr. Jaishankar said the impact of the conflicts extends far beyond the regions where they occur. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin today, with host England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston in Birmingham. The month-long tournament will be hosted across England and Wales, with the final is set to take place on 5th of July at the iconic Lord's Cricket Ground. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony last night. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath, main Mukesh Kumar. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन के स्विट्जरलैंड दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत, 37 घायल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अलकांस और रक्षा सचिव जॉन हीली ने सैन्य निधि विवाद के चलते इस्तीफा दिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें आशा है कि सप्ताह के अंत में यूरोप में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार न रखने और न ही खरीदने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए, जिसे उन्होंने तेहरान के खिलाफ अमरीकी प्रशासन के दबाव अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया। अमरीका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। इससे क्षेत्र में हफ्तों से चले आ रहे सैन्य तनाव और समुद्री व्यवधानों के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम होने की संभावना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
2: To find common ground.
1: इससे पहले डॉक्टर जयशंकर अपने दो देशों के दौरे के अंतिम चरण में कुलतारंता वार्ता में भाग लेने के लिए बुल्गारिया से फिनलैंड पहुंचे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब द्वारा आयोजित इस वार्षिक वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेता और नीति निर्माता एक साथ आए थे। विदेश मंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और तेजी से अनिश्चित होते वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर बल दिया। उनकी मुलाकात फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता के दौरान हुई। विदेश मंत्री ने फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेपी पी लजारो और फिलीपींस के लोगों को देश के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मिश्री ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मुलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अल कांस ने रक्षा सचिव जॉन हीली के इस्तीफे के बाद स्टार्मर सरकार से इस्तीफा दे दिया है। हीली का इस्तीफा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ सैन्य निधि को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ है। श्री अल कांस ने कल इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि सरकार की रक्षा निवेश योजना न तो पर्याप्त रूप से परिवर्तनकारी है और न ही इसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है। ये इस्तीफा हीली के उस तीखे पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर द्वारा प्रस्तावित सैन्य खर्च देश की रक्षा के लिए आवश्यक राशि से बहुत कम है। श्री हीली के स्थान पर कैबिनेट में सुरक्षा मंत्री और पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी डैन जार्विस को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के ईदगाह मैदान में हजारों निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 16 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। हालांकि किफायती आटा, चावल, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कल शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफलों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे हालात खराब हो गए। रावलकोट में करीब 60-70 हजार लोग पाकिस्तान के निरंतर कब्जे और क्षेत्र में उसकी नीतियों के खिलाफ नारे लगाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पीओके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 30 मृतकों और 200 घायलों के लिए न्याय की मांग की थी। खाई गाला गांव में निवासियों ने बाजार बंद कर दिए और हिंसा के खिलाफ मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन के बाद सड़कें और खेत खलिहान खून से लथपथ हैं और शोक संतप्त परिवार अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने क्यूबा की सरकारी तेल और गैस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे क्यूबा पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर आरोप लगाया है कि वो ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल दमन जारी रखने और अपने नेतृत्व को समृद्ध करने के लिए कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अंतर्गत क्यूबा की सरकारी ऊर्जा कंपनी यूनियन क्यूबा पेट्रोलियम को प्रतिबंधित घोषित करने की घोषणा की है। श्री रूबियो ने कहा कि हर संसाधन की तरह ऊर्जा को भी क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार ने लंबे समय से दमन और स्वार्थपूर्ण सत्ता के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अमरीकी विदेश विभाग ने आरोप लगाया कि दशकों से बुनियादी ढांचे में कम निवेश के कारण आम क्यूबा वासियों को ईंधन की कमी और बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका 2026 के वैश्विक शांति सूचकांक में 14 पायदान पर पहुंच गया है जिससे उसे दक्षिण एशिया में दूसरा स्थान मिल गया है और यह इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। यह रैंकिंग लगभग 3 दशक के गृह युद्ध के बाद देश के निरंतर सुधार को दर्शाती है जो 2009 में समाप्त हुआ था और राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने के प्रयासों का परिणाम है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का

जी आ गई। मुझे पता है कि आपको इंतजार हो रहा है ना बहुत देर से कि भाई जल्दी से वक्त हो और हम अपनी पसंद धड़ाधड़ यहाँ पर भेज दें। शुरू हो जाइए, भेज दीजिए वो गीत और वो नाम जो आपका नाम है और वो गीत की बोल जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन भेजना कहाँ है, जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी जान लें, 9868868753 या 9868687853 ये नंबर है जिस पर आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com नंबर एक बार फिर से बता दूँ, 9868868753। जी हाँ, 9868687853 दोबारा नहीं बताऊंगी, जल्दी से नोट कर लीजिए और अपनी पसंद हमें लिख भेजिए। अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिएगा और अच्छे से लिखिएगा, साफ सफाई से, नाम के नीचे नाम, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने में दिक्कत हो और फिर मुझे उसे स्किप करना पड़े। तो जितना हो सके क्लियर लिखिए ताकि मैं उन्हें शामिल कर सकूं। दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप, 10:32:24 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आंचलिका क्रिस्टल वॉइस और ये है दिल का मेल बॉक्स जिसमें आप भेज रहे हैं हमें अपनी पसंद। तो चलिए शामिल कर लेते हैं कुछ मैसेजेस को। रजनी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बाघेल और पूरे परिवार ने हमें मैसेज भेजा है। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने महाराष्ट्र नांदेड़ से मैसेज किया है। योगेश शर्मा ने फरीदाबाद से लिखा और हमें लिखा है उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव गरिमा ने कहां से, नई दिल्ली से। और इसके साथ हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है महाराष्ट्र पुणे से, सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ और लिखते हैं कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे लगते हैं, शुक्रिया। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का मैसेज, मुकेश जगताप का मैसेज। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजनू काटीला से, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह नेपानगर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजानिया ने हमें सिरसा हरियाणा से लिखा है। मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान और मोहम्मद इसरार नरगिस खातून के साथ लिख रहे हैं हमें मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सुफियान बलीमारान से हमें लिख रहे हैं और राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश हमें लिख रहे हैं संभाजी नगर छत्रपति से। और पुराना तालाब डुमराव से वल्ला अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी और अस्मा नाज अंसारी का हमें मैसेज पहुंचा। और इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम, वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम का मैसेज हमें लिखा है। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा ने ये मैसेज है। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और जीनत जहां का मैसेज। और ओपी तेग चंदानी ग्रेटर कैलाश से हमें लिख रहे हैं। प्रभा अंदरा, प्रमिला और निशा महेश का मैसेज सरगुजा मेन पार्ट से हमें मिला है। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता का मैसेज। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्य भारती और उमाराज, जालंधर से मीना कौर और दुर्गा कौर का मैसेज। बीबी अंसारी, निशा परवीन, डब्ल्यू अंसारी, इंदिरा विहार से लिख रहे हैं। दिल्ली से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवीएम का मैसेज मालियान सरधना मेरठ से मिला है। बिहार स्टेट से नसरीन अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से हमें लिखा है मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमीन ने। थोड़ा स्पेस कम कर देंगे तो मुझे एक ही मैसेज में इजीली इसे पढ़ना होगा वरना स्क्रॉल ही करती रह जाऊंगी मैं। और इसके अलावा हमें लिखा है चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल ने जमशेदपुर से ये मैसेज हमें पहुंचा है। कहां से, डोंडी लोहारा से प्रभा जमुरिया, अनुश्री जमुरिया और पूजा डोली जमुरिया का। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेश कुमार जाटव, संदीप जाटव और कशिश जाटव का मैसेज। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार का मैसेज। राजस्थान भोपालगढ़ से सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से। और नरगिस खातून, मोहम्मद इसरार,
ये देखिए फिर से बदल बदल के मैसेज करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है भाई। आप अलग अलग डिज़ाइन में मैसेज भेजते हैं ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं और फिर से पढ़ दूं। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, मिलाईकर छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेज रहे हैं। दादा बाबू रोड गिरी डी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज बाबू अहद चाहत का मैसेज है, और बबलू साहू, चामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या साहू का छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव से हमें मैसेज मिला। सिद्धार्थ गुणाने, अश्नताई गुणाने, हीरामणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने का हमें ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से मैसेज। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली का बड़वाह जिला खरगोन एमपी से मैसेज। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल, भानु प्रकाश का मैसेज, और फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण का हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी और पूरे परिवार, मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह का मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद दुल्हापुर से। और इसके अलावा सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का आशा नारंग के साथ, सैयद मसरूर के साथ हमें सहारनपुर से मैसेज पहुंचा है, और हमें लिखा है जयराम खोरवाल ने फिर से हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे ने हमें महाराष्ट्र से लिखा है, पीड़ शहर से, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे का मैसेज। तो भाई और मैसेजेस को शामिल करने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत शामिल करते हैं, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब बलीमारान से हमें लिख रहे हैं। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत लता जी की आवाज में।

0: बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट। क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और दिल का मेल बॉक्स में आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है। किस किसने हमें मैसेजेस भेजे हैं ये शामिल कर लेती हूँ और फिर अगला गीत किसकी फरमाइश है ये आप पता कर ही लेंगे। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने हमें पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लिखा। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे अब्बासी परिवार ने बुलंदशहर से हमें लिखा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश का मैसेज, पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर का नरवेल महाराष्ट्र से और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मोहरकर का मैसेज। श्रीमती रंजू बाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर, जगदीश धाकर ने मध्य प्रदेश रतलाम से हमें लिखा है और विरार महाराष्ट्र से विकास वर्तक का मैसेज। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का हरियाणा झज्जर से और कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान का मैसेज हमें पहुंचा है। साथ ही हमें लिखा है उस्मान वोहरा, शहनाज, शिरीन और गुड्डी ने अहमदाबाद से, जी हाँ अहमदाबाद से, और हमें महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश, प्रीतेश और पूरे संगई परिवार का मैसेज मिला है। साथ ही हमें मनोहर लाल गांधी ने विजय नगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिखा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का मैसेज। कॉलेज रोड, गरोड़ जिला, मंदसौर, मध्य प्रदेश से हमें हरी प्रसाद विश्वकर्मा, उषा, मानसी, वाणी का मैसेज मिला और ये मैसेज पंकज मोहट का अमरावती महाराष्ट्र से। प्रकाश गोगिया ने हमें लिखा है दिल्ली से। मधु किरण का भी मैसेज हमें पहुंचा है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज हमें बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मिला है। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने प्रथम सलूजा के साथ हमें लिखा है जनकपुरी नई दिल्ली से और ये मैसेज संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल का पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का मैसेज हमें मिला। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा का भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना और आलिया अंसारी का मैसेज और रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और

लड्डू का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज कहाँ से पहुंचा है, आप इतना छोटा लिखते हैं कि मुझे नाम अलग से ढूंढने पड़ते हैं। ऋतु बत्रा, जुगल बत्रा, हर्षिता बत्रा और कृष बत्रा का गोपाल पार्क से मैसेज मिला है। पहले अपने नाम लिखिए एक के बाद एक, और उसके बाद अपने शहर का नाम लिखिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, और ऊपर नीचे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लाइन से जब आप लिखते हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रेणु गोयल, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से हमें लिख रहे हैं, और इसके अलावा धर्मवीर फिल्म से गीत सुनना चाह है किसने, जगदीश कुमार, ऋतिक, राहुल ऋतिक नांगलोई से, राहुल और ऋतिका का नांगलोई से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस का मैसेज जनकपुरी, सहारनपुर से, भव्या झा गाजियाबाद से हमें लिख रही हैं, और श्रोता नजफगढ़ जय विहार से, शाहरुख फारूक, शबनम और शाहनाज, साथ ही महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी का मैसेज दिशा गोस्वामी के साथ, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हैं ऐसा मत करिए दोस्त, मधुबाला तिलंगपुर कोटला से हमें लिख रही हैं, और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, जोड़ा सिटी दीवाना का मैसेज, स्वर्ण सिंह गिलका, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविनाश के साथ ठाकुरावाला से, लोहगढ़ गांव से मैसेज पहुंचा, कैलाश चंद कोटली कोटपुतली राजस्थान से हमें लिख रहे हैं, और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला है, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का हमें व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से मैसेज पहुंचा, भवानीगढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा का मैसेज, और ये मैसेज हमें लिखा है अनिल शर्मा ने सरिता विहार से। इसके अलावा हमारे पास सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचिता वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वद और सानवी का मैसेज पहुंचा है कालेगांव जाफराबाद से। हमें लिखा है कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा ने द्वारिका से जय हिंद, और हमें निधि कपूर ने गुड़गांव से हमें मैसेज पहुंचाया है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोशिश रहेगी शामिल करती चलूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत उमा देवी जी की आवाज में, और इससे पहले जो गीत सुना था ना लता जी की आवाज, तो मैंने बता दी थी, किशोरदा का नाम बोलना भूल गई थी, तो बता दूं कि उसमें किशोरदा भी शामिल थे। फिलहाल ये गीत, ये रहा उमा देवी जी की आवाज में।

आपके भी गीत हम तक पहुंच रहे हैं, जिनकी फरमाइशें आप पहुंच सुनना चाहते हैं, जो गीत आप फरमाइश हमें कर रहे हैं, आपके भी मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। पुराना धूमधारा विक्की धूमधारा पूना राम धूमधारा विक्की और दीपू यश का हमें रघुबीर नगर से नई दिल्ली से मैसेज पहुंचा है। इसके खन्ना ने गुरुग्राम से लिखा है और हमारे पास ये मैसेज जितेंद्र कुमार गोदावरी आशनी लकी और विशाल का फरीदाबाद से, दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत का गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से मैसेज, उत्तराखंड से विपिन नेहरा काशीपुर से काशीपुर उत्तराखंड से विपिन नेहरा का मैसेज, हरजिंदर शिंदा जसवीर जसी सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से हम लिख रहे हैं, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुणाल का हमें मैसेज पहुंचा, राजेश कुमार मनीष कुमार उमेश खयाना से हमें लिख रहे हैं विष्णु गार्डन से, सुनीता पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से मैसेज पहुंचा है, और ए के टंडन ने माया इंक्लेव हरिनगर से हमें लिखा है कि आपका प्रेजेंटेशन होमली लगता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही महसूस करें। और मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का मैसेज हमें पहुंचा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, हमें लिखा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा ने एसपी गोयल का हमें मैसेज पहुंचा है, नाम नहीं लिखा कहां से। और इसके अलावा हमारे पास मेरा जहां आजाद नगर गुलाब से लिख रही हैं गुलाब साबिर राही ताज मोहम्मद अंसारी के साथ, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का मैसेज, राजेंद्र जटोलिया उषा जटोलिया चारू जटोलिया कृष्णा जटोलिया के साथ दिल्ली नांगलोई से लिख रहे हैं, और हमारे पास अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक का मैसेज भी पहुंचा है कहां से, मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज से। और इसके बाद मैं देख रही हूँ बहुत सारे रिपीट मैसेजेस, भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा दंतरेगी से हमें लिख रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि मैं बार बार बहुत सारे नामों को शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, कोई बात नहीं, मेरे पास तो मैसेजेस पहुंच रहे हैं। फिलहाल मैं गीत आप तक पहुंचा देती हूँ। ये गीत की फरमाइश हमें लिखी है विकास बंसोड़े रेखा बंसोड़े अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे ने, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से और हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

दोस्तों दिल का मेल बॉक्स में तो इतना ही, लेकिन फिर से मुलाकात होगी 11:10 पर। लेकर तस्वीर जुड़िएगा जरूर आपकी दोस्त आरशी रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। फिलहाल इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमेरिकी सीनेटर और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइट स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर

0: कर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. Sharing a Sanskrit quote, the Prime Minister said the country's Nari Shakti is the cornerstone of nation building. He added that the mothers, sisters and daughters of the nation today are enhancing the glory of Mother India with their extraordinary talent and skills in every field. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding, MOU, with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exports.

क्या आप 2026 की इन गर्मियों में, इन छुट्टियों में दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं? तो मैं आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप यहाँ पर कभी गए हैं तो हो सकता है कि आपकी यादें ताज़ा हो जाएं, और अगर आप नहीं गए हैं तो आपका मन कर जाए कि आप आज ही बस बैग उठाएं और पहुँच जाएं। आज जिस जगह की मैं बात करने वाली हूँ उसे जानते हैं हम तमिलनाडु के येरकोड के नाम से। जी हाँ, तमिलनाडु का येरकोड, ये पर्यटन स्थल जो है वो बहुत ही खास है, और अगर आप पारिवारिक छुट्टियां यहाँ पर बिताना चाहते हैं तो इसके लिए एकदम बेस्ट प्लेस है ये, जिसमें भरपूर आनंद, आराम, रोमांच और मौज मस्ती सब कुछ आपको मिलेगा। येरकोड झील, पगोड़ा पॉइंट, गुफा भालुकी और कोटा चोड़ू, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए जो यहाँ की अद्भुत सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आज की इस तस्वीर में रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ के बारे में इतना कुछ तो मैं आपको बता ही दूंगी कि अगर आप यहाँ जाने का प्लान करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप यहाँ पर अच्छे से घूम सकें, आप जान सकें कि यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए, करने के लिए, खाने के लिए और घर लाने के लिए। बहुत सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको, लेकिन रहिए मेरे साथ इस सफर में जुड़े हुए। 11:12 और 40 सेकंड हो चुके हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस, तस्वीर सुन रहे हैं आप, और शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत के साथ रफी साहब और आशा जी और साथियों की आवाज में। ये रहा आई मिलन की बिला से खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ग्यारह बजकर 20 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्ची रेखा क्रिस्टल वॉइस। आज हम निकले हैं तमिलनाडु के एयरकॉर्ड की यात्रा पर। तमिलनाडु का एयरकॉर्ड हिल स्टेशन अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्रकृति की शांति के साथ आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक शांत और प्राकृतिक पर्यटन स्थल होने के नाते ये परिवार और दोस्तों के साथ खुशनुमा पल बिताने के लिए, मनोरंजक गतिविधियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर मैं बात करूं एयरकॉर्ड पहाड़ियों की, तो संतरे के बागानों, कॉफी, फलों और मसालों के बागानों से भरी ये भूमि शेवरॉय पहाड़ी में स्थित है। और अगर आप एयरकॉर्ड में ठहरे हैं तो आप आसपास के स्थानों जैसे सलेम, स्वामी मलाई, होसुर, इरोड, नमक्कल और कुछ बाकी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो यहां पर घूमने के लिए ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां आपको जरूर जरूर जाना चाहिए। एयरकॉर्ड हिल स्टेशन गर्मियों के मौसम में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये अभी भी एक अनछुआ प्लेस है। यहां पर अभी भी कम लोग पहुंचते हैं, इसलिए हम यहां एयरकॉर्ड हिल स्टेशन और उसके आसपास घूमने के लिए आपको कुछ बेहतरीन प्लेसेस बताएंगे जिसपे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एयरकॉर्ड झील की, तो तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से बनी झील एयरकॉर्ड झील जो है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। हरे भरे मैदानों के बीच शानदार नजारों का आनंद आप यहां ले सकते हैं। यहां के शांत और सुखद वातावरण में आप झील किनारे स्थित कई रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं, जहां पर बैठ सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। एयरकॉर्ड में एक दिन में घूमने की योजना बनाते समय इस जगह को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा, क्योंकि ये जगह इस जगह पर तो है ही, यहाँ से आसानी से आप घूमने के लिए जा सकते हैं और आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये केंद्र है कहा जाए एयरकॉर्ड का, तो अपने आप में आसपास की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमी और भोजन प्रेमी यहाँ समान तौर पर पहुँचते हैं। एक अगर मैं बात करूँ तो जिन्हें खाना बहुत पसंद है, जिन्हें प्रकृति बहुत पसंद है, वो सभी लोग यहाँ पर जरूर जाते हैं। झील में आप बोटिंग कर सकते हैं और आपके कई यादगार पलों को संजो कर ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लूप रोड ट्रिप की, तो अपने आप में ये भी काफी खास है। 32 किलोमीटर का लूप रोड ट्रिप आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ओर बैरियर लगे हैं। यूपिन जैसे घुमावदार मोड वाली लूप रोड 32 किलोमीटर की यादगार यात्रा का अनुभव आपको देती है। और यहाँ तभी गाड़ी चलाएं जब आपको ड्राइविंग अच्छी तरह से आती हो और अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा हो। एयरकॉर्ड में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है ये। आसपास के इलाकों में हाइकिंग करना आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव यहाँ हो सकता है। और अगर आप एयरकॉर्ड में दो दिन में घूमना चाहते हैं, रोमांच और प्रकृति के नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये जगह उसमें आप शामिल कर सकते हैं और उसके लिए ये प्लेस एकदम फिट बैठती है। तो अगर आपके पास एक दो दिन का समय है और आप एयरकॉर्ड घूमने जा रहे हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो एयरकॉर्ड में पेगोड़ा पॉइंट एक प्लेस है। ये गोड़ा पेगोड़ा पॉइंट जो है वो यरकोड में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और ये भरपूर पहाड़ियों से घिरी है और बहुत खूबसूरत जगह है। सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। यरकोड बस स्टैंड से सिर्फ करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह पिरामिड पॉइंट के नाम से भी यहाँ फेमस है क्योंकि यहाँ शिंगलों के 4 ढेर पिरामिड की तरह लगे हुए हैं और बेहतरीन नज़ारों के लिए यहाँ पर लोग जरूर पहुँचते हैं कुछ समय बिताने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, जरूर बताऊंगी, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाते हूँ लता जी की आवाज में।

तभी मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, आप पगोड़ा पॉइंट जा सकते हैं और ये यरकोट से 5 मील की दूरी पर है। यहाँ कार या साइकिल से पहुँचना बहुत आसान है और इजीली आप जा सकते हैं यहाँ किसी भी तरीके से। साइकिल से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का मजा भी ले सकते हैं। यरकोट, तलाई, चौलाई, सेलम, ये सभी आसपास है, तो इन जगहों पर आप आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो यहाँ पर पगोड़ा पॉइंट में, वो है सबसे अद्भुत नज़ारे देखने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, जब आप यहाँ पर जा सकते हैं और आपको अलग अलग खूबसूरत नज़ारे देखने का मौका मिल सकता है। शानदार नज़ारों की तस्वीर अगर आप लेना चाहें तो अपने साथ कैमरा जरूर रखिएगा। सुबह के समय भीड़ कम होती है और आप इस टाइम पर जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं और यादगार तस्वीरें अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं रेशम फार्म की और गुलाब उद्यान की, तो आप यहाँ भी जाइएगा जरूर। ये यात्रा ज्ञान और मनोरंजन के लिए बेस्ट होगी। बगीचे में खिले रंग बिरंगे गुलाब आपको अलग अलग तरह की प्रजातियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो गुलाब के उगने से जुड़ी होती हैं, गुलाब के पैदा होने से जुड़ी होती हैं, वो आपको पता चलेंगी। और इसी तरह आपको रेशम के कीड़ों के पालन पोषण और उनके खोल से रेशम बनाने की उपयोगिता के बारे में भी बहुत सी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। भालू की गुफा है जो आप देख सकते हैं यरकोड में, बहुत ही रोमांचक प्लेस है ये। यरकोड में आप इस जगह पर भी जा सकते हैं। नाटन बंगले के पास स्थित भालू की गुफा को भगवान गुरुगन का निवास स्थान माना जाता है और ये शेरवरोयन मंदिर के रास्ते में पड़ता है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो ये जगह आपका सचमुच मन जीत लेगी। आपको एक बार यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। कोटा चेडू सागौन वन है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत निर्मल वन है ये। यहाँ प्रकृति की गोद में शांत और लंबी सैर करना आपको सचमुच बहुत ही सुखद लगेगा और आप यरकोट के अलग अलग वन्य जीवों के नज़ारे भी, दर्शन भी कर सकेंगे। चीटी, खाने वाले जानवर, बाइसन, लोमड़ी, पैराडाइज्ड फ्लाई कैचर और इसके अलावा अवाबील पक्षी, ऐसे बहुत से पक्षी भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। चुपचाप अपने कैमरे में आप इनकी तस्वीरें यहाँ पर ले सकते हैं और अपने कलेक्शन में इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। वानियर नदी और उससे सटे बांध के पास कुछ पल आप रुक जाइए, सचमुच आपका दिन बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ किलियूर वाटरफॉल की, तो क्या आपको नहीं लगता कि गर्मियों के मौसम में झरने जो हैं वो सचमुच पर्यटकों की एक मेन अट्रैक्शन होते हैं। जहां पर भी आपको पता चल जाए कि वाटरफॉल है, आप पहुंच जाते हैं बिना कुछ सोचे, तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक किलियूर वाटरफॉल है जो कि यरकोड झील के बहते पानी से बनता है। 300 किलियूर वाटरफॉल भी इसे कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। झरने बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं और आप झरने तक जाने वाले 2 किलोमीटर लंबे रास्ते पर पैदल चल सकते हैं। सिर्फ एक दिन का अगर समय मिल जाए आपको, तो फिर आप दिन के समय में समय से जाइए यहाँ पर और इस जगह का आनंद जरूर लीजिए। डियर पार्क है एक जगह, यहाँ भी आप जा सकते हैं। बेस्ट प्लेस है, आपको जरूर यहाँ घूमना चाहिए। पार्क में आजाद रूप से घूमते हुए हिरण, बतख और मोरों की आप संगति कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और सचमुच ही आपकी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। ये पार्क यरकोट झील के किनारे पर है और इसलिए यहाँ की हरियाली जो है वो सचमुच मन को जीत लेती है। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं यरकोट में घूमने के लिए, लेकिन गीतों के साथ साथ बढ़ेंगे आगे आगे, बस हमें साथ लिए चलते रहिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद वापस तो मिलना ही होता है। आप सोचते होंगे ना कहाँ चले गए, एक छोटा छोटा ब्रेक तो लेना बनता है ना। 11:37:41 हो चुके हैं और मैं याद दिला दूं कि आपको तमिलनाडु की एयरकोट घुमा रही हूँ आज मैं। तो भाई एयरकोट में और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, तो बता दूं कि एयरकोट में लेडीज सीट एक जगह है और एक तरह का ये अवलोकन मंच है जहां से पूर्वी घाट की घुमावदार सड़क का नजारा दिखता है। यहां से मिटूर बांध और सलेम शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ एक टॉवर भी है जिसमें दूरबीन लगी है ताकि आप मनमोहक नजारों का आनंद ले सकें। ये टॉवर पर्यटकों के लिए कि सिर्फ दिन के समय ही खुला रहता है, तो अगर आप यहाँ जाएं तो दिन में यहाँ जाइएगा और दूरबीन से यहाँ के आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा एयरकोट में शिवरॉय हिल्स है जो कि आपके लिए बहुत खूबसूरत प्लेस हो सकता है। शिवरॉय हिल्स एयरकोट के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है और ये पहाड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और लोग यहाँ खास तौर से प्रकृति का आनंद लेने और सुकून पाने के लिए आते हैं। इस पहाड़ी इलाके में कुछ पुराने कॉटेज और होम स्टेज भी हैं, लोग वीकेंड में यहाँ दो दिन बिता सकते हैं और उनका सचमुच सफर जो है वो लाजवाब हो जाता है। अगर मैं बात करूं एयरकोट घूमने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो भाई एयरकोट घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान आप यहां जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग एयरकोट में वीकेंड ट्रिप को प्लान करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए एयरकोट घूमने की सलाह मैं आपको दूंगी। अगर आपको वक्त मिले तो करीब एक हफ्ते यहां रहिएगा और ये वक्त तो आपको शायद छुट्टियों में ही मिल पाएगा। ज्यादातर पर्यटन के तौर पर जो लोग यहाँ पहुंचते हैं मई महीने में एयरकोट जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दौरान कई गतिविधियां होती हैं जिनमें 7 दिनों तक चलने वाला ग्रीष्म उत्सव भी शामिल है। एयरकोट में अलग अलग मौसमों में यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है यहाँ, जो कि छुट्टियों और मौसम के लिए सबसे बेस्ट है। मानसून की अगर बात करूं तो हरे भरे नजारे लेकिन फिसलन भरी सड़कें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। सर्दियों में ठंडा मौसम और कम भीड़ होती है। मई का महीना ग्रीष्मोत्सव की वजह से खास होता है, तो आप इस सब को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। पहुंचना कैसे है एयरकोट जरूर बताऊंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए इस गीत के बाद।

0: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: चलिए अब आपको बता देती हूँ कि एयरकोर्ट पहुंचना कैसे है। एयरकोर्ट के सबसे नजदीक स्टेशन दानिशपेट रेलवे स्टेशन है। हालांकि एयरकोर्ट से 22 किलोमीटर दूर स्थित तो मुख्य टर्मिनस सलेम रेलवे स्टेशन है। सलेम हवाई अड्डा एयरकोर्ट से 38 किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए ये पड़ोसी हवाई अड्डा भी है। आप तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ऑप्शन भी चुन सकते हैं जो एयरकोर्ट से 168 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरकोर्ट के अधिकांश पड़ोसी कस्बों और शहरों से बसें उपलब्ध हैं। अगर आप 32 किलोमीटर के लूप रोड पर खुद ड्राइव करने की इच्छा रखते हैं तो ये मजेदार अनुभव भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहें यहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ, एक और जगह के बारे में बताऊं अगर मैं आपको, कनादी और व्यू पॉइंट है जो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। पेगोड़ा पॉइंट की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला शांत सूर्यास्त के लिए बेस्ट है ये प्लेस, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यात्रियों के लिए अगर मैं बात करूं तो एयरकोर्ट जो है वो भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों जैसा नहीं है। यहाँ का शांत वातावरण, ठंडी हवा और कम यातायात इसे बेहद सुकून भरा बनाते हैं। शाम को एयरकोर्ट झील के किनारे बैठना मन को शांति देता है। पगोड़ा पॉइंट से सूर्यास्त का नजारा ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा इसे याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। सचमुच बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप शहर की व्यस्त जिंदगी से कुछ समय के लिए राहत पाना चाहते हैं तो भी ये एक बेस्ट प्लेस है। तो कुछ सामान पैक कर लीजिए और पहुंच जाइए यहाँ पर, क्योंकि आपकी यात्रा यहाँ के लिए अगर आप एक बार कर लें तो यादगार होगी। समुद्र तल से 1515 मीटर के लगभग की ऊंचाई पर स्थित 7 जंगलों की भूमि एयरकोर्ट गर्मियों में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एयरकोर्ट में छुट्टियां बिताने की योजना अक्टूबर से जून के बीच बनाने की सलाह मैं आपको दूंगी। वैसे ये जो मौसम है अभी, ये भी बहुत सही है यहाँ जाने के लिए। मई में 7 दिवसीय ग्रीष्म उत्सव का आयोजन होता है जिसमें फूलों की प्रदर्शनी, डॉग शो, नाव दौड़ और कई गाँव के मेले भी शामिल होते हैं। अगर आप मई के मौसम में अगली बार वक्त मिले जाना चाहें तो तब जाइएगा जरूर। और गर्मियों में ये एयरकोर्ट की पर्यटन स्थलों की यात्रा अगर आप करते हैं तो ये अनुभव भी बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, पगोड़ा पॉइंट, बोटानिकल गार्डन, कावेरी पीक, लूप रोड, बहुत सी चीजें हैं और कई गतिविधियां भी आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचरस एक्टिविटीज का आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। और संस्कृति की अगर मैं यहाँ की बात करूं तो तमिलनाडु की शिवरॉय पहाड़ियों में बसा एयरकोर्ट एक शांत और आकर्षक हिल स्टेशन है। इसे गरीबों का ऊटी भी कहा जाता है। एयरकोर्ट की संस्कृति खासतौर से प्राचीन तमिल, द्रविड़ संस्कृति और औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रभाव का एक अनूठा मिश्रण है। गरीबों की ऊटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप कम बजट में यहाँ पर जाना चाहते हैं तो भी आप इस जगह पर जा सकते हैं, मतलब सस्ते में बेस्ट प्लेस, और क्या चाहिए। फिलहाल एक और प्यारा संगीत सुनाती हूँ, उसके बाद यहाँ की संस्कृति से जुड़ी कुछ और बातें भी आपको जरूर बताऊंगी।

पनवड़िया तो कन्या उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रसल।

दोस्तों, येरकोड जो नाम है वो तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना है, येरी यानी झील और काडू यानी जंगल, जिसकी वजह से इसका शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो झील का जंगल कहा जा सकता है। ये जो जगह है सदियों से मलयली और आदिवासी समुदाय का निवास स्थान रहा है। मलयली आदिवासी समुदाय जो है वो यहाँ सदियों से रहता आया है और आज भी यहाँ के मूल निवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली, कृषि जैसे बाजरा, रागी और फल उगाना और सांस्कृतिक अनुष्ठानों को संजोए हुए हैं, संभाले हुए हैं। मई के महीने में आयोजित होने वाला सबसे सांस्कृतिक उत्सव जो है यहाँ का वो है फूलों की प्रदर्शनी, जब पारंपरिक नृत्य और हस्तशिल्प मेले यहाँ लगते हैं। त्योहारों में पोंगल, कार्तिकाई दीपम और तमिल नववर्ष बहुत उत्साह के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। अगर बात करूँ खान पान की तो येरकोड अपने ताजे कॉफी बागानों और संतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति में मसालों जैसे काली मिर्च और इलायची, शहद और घर की बनी चॉकलेट का बड़ा महत्व है। और अगर मैं बात करूं तो स्कॉटिश कलेक्टर डेविड कॉक बर्न द्वारा कॉफी की खेती शुरू करने के बाद करीब 19वीं सदी में यहाँ ब्रिटिश शैली के बंगले, कॉटेज और चर्च बनाए गए। आज ये औपनिवेशिक विरासतें प्राचीन शेवाराय मंदिर और पगोडा पॉइंट के साथ मिलकर यहाँ की अनूठी वास्तुकला को दर्शाती हैं। और येरकोड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ शानदार स्थानीय उत्पादों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कॉफी, ताज़ा मसाले, होममेड चॉकलेट, हर्बल एसेंशियल ऑयल्स ये सब कुछ खरीद कर अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप इन चीजों को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए ताकि जब भी आप यहाँ पर जाएं तो आपको ये सब चीजें खरीद कर घर लाना याद रहे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत सारी और भी चीजें हैं येरकोड में आप जो खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है, सिमन की विरल

एक तरह का ड्राई चिकन होता है, स्थानीय बैम्बू चिकन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। पारंपरिक शाकाहारी खाने की बात करूं तो केले के पत्ते पर पोंगल, इडली डोसा और नारियल वाली सांबर चटनी का आप आनंद ले सकते हैं। ताजी फिल्टर कॉफी आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं, इंडियन फिल्टर कॉफी और हॉट चॉकलेट का मजा आप ले सकते हैं। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म तली हुई बटर फिश और आग पर भुना हुआ भुट्टा आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो भाई इतना सब टेस्ट करने का मौका मिले तो कहाँ रुका जाता है, मैं तो अभी उड़ चली हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। लेकिन फिलहाल आप तक एक गीत पहुंचा देती हूँ, ये रहा एक और खूबसूरत गीत लता जी की आवाज में।

तो भाई अब तस्वीर के सफर में तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। मैं रेखा, आज रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आपसे आज के लिए विदा। 11:57 53 सेकेंड मिलेंगे फिर किसी रोज, ये वादा रहा।

दाक्सांग जांगे लव इन टोक्यो फिल्म लो लता मंगेशकर ने सरजा लूर सोम कनिन पिन हसरा जयपुरी यालो यांस्ट्रे कनिन पिन शंकर जयकिशन फिल्म लोगों ने डिग्री में ना कर सकता। हम दोनों फिल्म लो मोहम्मद रफी ने सरजा दिन साहिर लो यांस्ट्रे कन जयदेव

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय

0: दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
1: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
1: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
1: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
1: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
1: जी,
0: ऐतिहासिक और अनुवांशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
1: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुँचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुँचा।
0: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
1: जी,
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके

0: दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: Dagsing isang e NCRT chandak zat kan itikrim umang sanatsat. Dering isang itikrim ekak stong chiknang sumgyash ngapa sanchis lapul tenpin. Ngaji akashwani lirishwen chiktamin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NETUG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalpindi to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the International Maritime Organization IMO Arsenio Dominguez has condemned the attack on a Palau-flagged tanker off the coast of Oman in which three Indian seafarers have been killed. Spokesman for the UN Chief Stefan Dujarric said Mr. Guterres is deeply concerned by the continuing escalation. Renowned Indian shooting coach and former Asian Games gold medalist Jaspal Rana died at the age of 49 at a private hospital in New Delhi today. He mentored Manu Bhakkar and helped her secure a historic double bronze medal at the 2024 Paris Olympics. President Draupadi Murmu expressed sadness over the passing of Jaspal Rana. Prime Minister Narendra Modi has also expressed grief at the passing away of Jaspal Rana. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 653 points to 74,486, while the Nifty rose 160 points to 23,322 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: मीडियम वेव 284.9 meters यानी 1053 kilohertz और FM 101.1 megahertz पर हम आकाशवाणी इले से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम।

0: जय हिंद फौज भाइयों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस मन पसंदीदा फिल्म गीतों के कार्यक्रम में। फौज भाई अपने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्म गीत, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं हम आपके है कौन फिल्म से गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीतकार हैं रविंदर रवाल और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें फिल्म से की सोनू निगम और फरदीन खान की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।
1: My pals, my buddies, my friends, today we've all graduated. पीछे बचपन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है। आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल न जाने कहाँ होंगे। I'm really sad, this is the last day of college. Hey you, by the way, we'll miss you.

की सिखाई हंसते हंसते। अरे धन्यवाद आपका, अच्छे अंक देके आपने हमें बचाया हंसते फंसते। हे थैंक यू।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं सुनते हैं कुछ ना कहो फिल्म से गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

आइए फौजी भाइयों, सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से, अनुराधा पोटवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं सुनते हैं कुछ दिल ने कहा फिल्म से गीत उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं निखिल विनय।

प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं धड़कन फिल्म से गीत अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

जाते जाते कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं परदेस फिल्म से गीत कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

माफ कीजिएगा, समय की कमी के कारण ये गीत आप पूरा नहीं सुन पाए। इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए इस वक्त का कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

गजे आकाशवाणी लेनी छुन चिकता इन निमे छु तो चिकता स्कर मंगा छु छरु कसता आकाशवाणी दिल्ली ने स्कूला उर्दिना नसुल मिड डे न्यूज तंग इस तंग स्कर मचोय का दोपहर समाचार सनाचा।

0: आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वजीर दाखला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक्वामे मुत्तहदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत की मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फीफा आलमी कप 2025 में टोरंटो में ग्रुप बी मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया व हर्जेगोविना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो ख्वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वकार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें ख्वातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संगे बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतह मीटिंग कर रहे हैं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत

डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने तालीमी, सनती और तिजारती सारिफीन पर खुर्दा पेट्रोल पंप से मोटर स्प्रिट और तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है और उनसे कहा है कि वो अपने ही सारिफ पंप से अपनी जरूरियात पूरी करें। ये फैसला मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के दौरान मकामी किल्लत से निमटने के मकसद से किया गया है। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि ये बंदिशें 90 दिन तक जारी रहेंगी। खुर्दा पंप्स को भी हिदायत दी गई है कि वो तेज रफ्तार वाला डीजल रोजाना महज 200 लीटर तक फरोख्त करे ताकि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी को रोका जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने खुराक और तकसीम आम्मा के महकमे के अफसरान के साथ कल एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद प्याज की सरकारी खरीद को मुस्तहकम और किसानों के लिए बेहतर मुनाफे को यकीनी बनाना था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि सरकारी खरीद की कम से कम यकीनी कीमत को बढ़ाकर 1650 फी क्विंटल कर दिया गया है, जो मंडी की मौजूदा कीमतों और स्टोरेज दर्जे की प्याज के लिए दरकार क्वालिटी पर मबनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कीमतें तय करने के तरीके को भी बेहतर बनाया गया है ताकि सरकारी खरीद को मार्केट के हालात के मजीद मुताबिक बनाया जा सके। इत्तला और नशरियात की वजारत ने टेलीविजन, रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसविदा अवाम की राय मालूम करने के लिए जारी कर दिया है। ये उसूल पिछले टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन और रेडियो खिदमात के लिए जारी मुख्तलिफ रहनुमा खतूत को जामे बनाने के लिए वजा किया गया है। ये उसूल हाल ही में नाफिज किए गए टेली मवासलात कानून 2023 के दायरे में वजह किए गए हैं। इन उसूलों का मकसद बहुत से मौजूदा रहनुमा खतूत की जगह एक वाहिद जाब्ता जाति फ्रेमवर्क तजवीज़ करना है। उसूलों का ये मुसविदा इत्तला और नशरियात की वजारत की वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है और लोग इस सिलसिले में अपनी राय और मशवरे 27 जुलाई तक भेज सकते हैं। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नज़रसानी शुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीक़ेकार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। एक बयान में एजेंसी ने बताया कि ये तब्दीलियां गुज़श्ता बरसों के दौरान उम्मीदवारों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर की गई हैं। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफेनी दुजैरिक ने कहा कि जनाब गुतेरस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों, शहरी जहाजरानी और इसकी आज़ादी के तहफ्फुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। भारत के मारूफ निशानेबाज और कोच एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले साबिक खिलाड़ी जसपाल राणा का इंतकाल हो गया है। वो 49 बरस के थे। भारत की कौमी राइफल एसोसिएशन के सदर कलिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक जसपाल राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF आलमी कप से भारतीय टीम की वापसी के दौरान बीमार हो गए थे। उन्होंने 2026 के पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी तौर पर कांसे के 2 तमगे जीतने में मनु भाकर की रहनुमाई की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मेक्सिको के जेपोपन में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला

0: मैक्सिको से, जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए-कार ला सकें। वज़ीर-ए-दाखला अमित शाह ने शहरी श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaspal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment, which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah chaired a high-level meeting to review the preparedness for the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and

0: Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का सातवां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
5: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा।

0: उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव किलोहर्ट्ज़ 6.5 यानोमीटर्स निप्के के चुके अभिषेक तंग श्रद्धर्गो यंग एफएम मेगाहर्ट्ज़ के अंतिक तंग श्रद्धर्जी कंगशे आकाशवाणी लेनी शुरू जितान निमेचुतो इंगिस्तां पेचरुक Kasda chutzot ngistang skarmangap chungang atsukpa ladak silurik sanatsadin. Inaas ngon la punchok doje salkani iluvo sanatsad.

0: Dersen gideceğim. Puntur doji salkani lojik sanatat.
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी हैं। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लद्दाख से लोग ने डिग्री में ना कर सकता चिरिंग रूप तंग चौपाने सेल खाने लुरी संचिस लपलेन।

0: Ebo, Akash Fani Lane, Kasatang Jirangi, Setan Trashine, Shnasu Sanazat. Sham Zonganga, Drust and Rilte, Tonsa Guni, Seltas Pinches La, Zonspon Kunzes Angmos, Delud Laskun Sose, Ponboguntang, Shisose, Sospa Sose, Tibatang, Executive Tusmiguntang Yampo, Sospa Jibotaza Tenok, Sospenanga, Shami SP, Ajas Malik, Likiri Ajdim, Kalatse BMO, Kalatse Degree College Tang, Zindachugis Pelopta and Lopsigun, Skirbuchan, Kalatse Tang, Singela Logi, Videogun, Kalatse Zidio Tang, Jan, Delud Laskun Sir Ponboguntang, Shisose, Sospa Sose, Tibatang, Kakurpagun, Tuzatenok, Yang Arzonanga, Draxi Tonsatan Delte, Soltas Natsok, Shigi Skorla, Trozur Zatenok, Itus SP Ages Maligis, Arzonanga, Drastan Delte, Nastan Naluskuni, Skorla, Shadazadinjik, Mimaskuninanga, Iskorla, Hago, Spelches, Irgosdom, Yot Kangun, Sospa, Shadazatenok. Sospe Ringsla, Sham Yuljonsi Gobaguni Sospe Tipa, Nansoxi Tipa, John Batang, Jan Sospa Sose Tuzmigunis, Sham Zonga, Draxi Tonse, Seltas Pinches, Tang Delte, Ranra, and Chosnes Paspegun Salazateno. It was Rzonspon Kunzes Amos, Sham Zonga, Draxi Tonsaguni, Seltas Pinchesla, Laskun Same, Rosdel Tangempo, Charles Dajestan, Chisoxi Sospa Same, Rosnzat Gushesika, Shesalazateno, Inatusla, Rzonsponis Mimans Kuntang, Mixali, Junu Pomo Kunla, Draxi Snoskuntang, Emergency Number 112 Scorla, Hagus Pelchesla, Labja Salazateno. Shirlon Narendra Modi Shadazat Kanangjin, Yuli Pomogunis, Financial Inclusion Netangste, Sonsde Yanlak Peches, Yontan, Kamzde, Kampe Charlas, Sangda Zaches, Salians, Sanjik Stang, Jungshul Zaches Tete, Laskar Sosenanga, Charlas Ganshan Zadin in Okmoltok, Shirlonis Chisos Pelam Regute Shadazat Kanangjin, Yuli Pomogunis, Drone Technology Soxi, Tus Some Zotapskun Colin Yochis Pejaste, Konkunla Skap Soma Mampojigi Lam Benjita in Okmoltok, Tenazoglas, Kujas Modis, Mutkani Lochugni Siringsla, Jungi Chosne, Pomoguni, Utit Zadintang, Yule Yerges, Kyonchesi Toga, Charles Zatkanguni, Skorla, Sherazats.
1: 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है।
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो।
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
1: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे।
0: ले डायरी सोना से कहा, लद्दाख से लोपटा सो से गिरकन गुल्ला पीएमई विद्या डीटीएच टीवी चैनल गुन और ग्यूते लोपटू गुल्ला योन्तान लोपजों सालिन योत्खानी थबलाम गुनी स्कोरला जगजी जोंदार सालिन योत्खान बो जदगो जिक्तांग्याम पो तोन तेनो इतुस लद्दाख हुजुंग आदे थोरिम योन्तान लस्का गटूंग ची बानु परवास कुंडोन और स्वेत सुला थुसा जातेनो या जदगोआ सुंगशा सालिन जिक ई डिजिटली रोक्स कुन ग्यूते लद्दाख से लोपटू गुंतांग मिक्साले गम्यूल थारिंग से लोपटू गुल्ला तुस सोमे योन्तान गुन थोप थुपचे जिनोक मल्तो जदगो स्कप्स जोंदार लेनखान गुनिस जोंदार रिंग्स ला जदखानी लोकन्यान रिगा जिग्रा फुल तेनोक यांग जोंदार सालखान गुनला अर्सीवा फुला जातेनोक Nubra Zonanga, Lamdon Inter School Sports Meet Juintang, Lamdon Lopte Yanlak Sose Loptukuni Parla, Barnstall Adjansdur Jigi Tadik Zatenok, Kilometer Sumtang Pet Zami, E. Barnstall Adjansdur Tadik Zaches, Mijipo, Drax is Noskun Guniskorla Hagos Pelches and Yampo, Loptukun E. Zoxi Shnoskan Gunetaring Aborches Bonok, Nubra Zonspon Mukul Benivalis E. Yantaring Me Banturla Chadartante, Lamchuga Zatenok, Yam Zadwa Sunsha Salinjik, Junu Pomogunanga, Drax Shnyosngan, Chen Yotkan Beka, Skyomon Chuginjik, Nubra Rzombo, Draxi Shkalas Merkani, Yuljong Shiki Gurchuk Chisla, Jung Tanzgeri Sospa Guntang, Miman Same, Rosdel Yong.

कसता खूनभरी मांग फिल्मेलु नितिन मुकेश दंग सातना सरगम गुन्नी सनाजत लोर सोमकन इंदिवीर दंग लोहस्तिकन राजेश रोशन।

कसता खतरों के खिलाड़ी फिल्मेलो मोहम्मद अजीज दांग अनुराधा पोडवाल ने सनाजा लोर सोमकन आनंद बख्शी अमलवास डिक्कन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दासंग जला कानून अपना अपना फिल्म लो मोहम्मद अजीज दांग आशा भोसले गुन्ने सनसत कसता कारण अर्जुन फिल्म लो कुमार सानू दांग अलका याग्निक गुन्ने सनसत लुर सोमकन इंदवीर दांग लुयांस टिकन राजेश रोशन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid.

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौजी भाई इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से गीत, अन्वेषा विनीत सिंह और हरदीप कौर की आवाज़ों में, गीतकार इशाद कामिल और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

लीजिए अब सुनिए ABCD 2 फिल्म से गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीत का मयूरपुरी और संगीत का सचिन जिगर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: लीजिए अब सुनिए किस्मत कनेक्शन फिल्म से गीत। आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार साहिद कादिरी और संगीतकार प्रीतम।

लीजिए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए कोई मिल गया फिल्म से गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार इब्राहिम आशिक और संगीतकार राजेश रोशन।

0: ngaji akashwani le ni jwen jik tan pito chi so dun nang skar ma chuk sum charu ka sa ta to so cha phi shi sting ne la da sana na sul tang del cha tsana za
1: Ladakh nang pe chogdu pomi yan lage tari ge ka polza ji pe ches ngishur gyat ngishur gu tang namgang yang machil da june ches chuksum chubshi tang chonge ja kulna diski chale substan ling gon pe nanga dolma sagdup ja che senjudu mimang skangmang thushisla choskul kapta zato iringsla taldan mimang skune phya solja tang don tang tari ge jatyo judu
2: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।
1: सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख नंगा निस्तुंग निशुर सारुक निशुर सब्दुन एकेडमिक सेशन एफिया एडमिशन गुजुक सोंगतनो लोपथुक गुने सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंगा जान तंग मिदावे थबलिंग नंगशिन लोपजुंग गुन लेंथ ऑफ जेसियो तनो इनंगा एमटेक एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी एमए पब्लिक पॉलिसी बुद्धिस्ट स्टडीज एमएससी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन टिबेटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड मेडिटेशन टेक्निक लोपजुंग सालचिसनो लोपथुक गुनला Lopox UGC Nangshin Topjisino, Gate Tang CUET, Yangjan Competitive Ryukskun Lengo Smithmano, UGC Teams Nangshin, Program Redenanga Loptuk Jipju Lenchisino, MTech Tang MSC Program Gun, IIT Madras Tang, IIT Kanpur Gute Topjisino, Yang MA Program Gun, Sindhu Central University Kalacheka, Topjisino, Tene Loptukune, Sham Jongse Kalache Zertang Ekayotkan, Sindhu Central University Nanga Admission Lenajat.
3: Tupstan Choskuling Gunpale, Chunzad made Sospadang, Nangpa Choskul Sospa Niske Zundela Tarizate, Polza Jipet says Nishurgat, Yana Chilza Junites Chuksum Zaspenba Neparla, Nime Chusud Nisika, Dharma Center Cholam Sarananga, Konsa Lamenamdenska Bungalwang Izin Nurbu Chore, Japik in Yungi Gospal Dancesla, Sangas Malle Zunga Sarub Zaches in Judo, Tefia Taldan Mimankangmans, Sangas Malle Zunga Sarub Zadalaskus Juste, Choskul Kapta Zadok,

0: एव आकाशवाणीलेन कसतंगिजरांगे सेतंताशिने स्नासुचनजात लदाक्सि युलखा सोसेनांगा ड्रग्सि तोरसार गेसिनियोत खानि सेलथप्स अपिंगचेजला जुंगतांग चिसोसि सोसपात सांगमे रोजदेल तंगयामपो छलज जचेसि रगोजदम योतकानिका इशेचला जातेनो श्रीलोन नरेंद्र मोदीस बुधखानि लो चुगनी से रिंग्सला जुंगि छोसने युली पोमोगुनला लास्का सोसेनांगा यरगेसि उठित जचेसि स्काप्स मा सालतेनो मलतो यांग द्रिंग ने फरला लामा युरु गोनपे जापनी सी गोनपे लोकोरी तुशुत युरु कप ग्यात गोजुक इसक्यो तेनोक कासाता शनासुल कुन इजिप्साल जाते सनाजात श्याम अर्जोंग नंगा ड्रग्स तां रेल ते तंसा गुनी सेल्थास फिंगचेज ला अर्जोंग स्पोन कुंजेस आंगमो संडेलो लास्कुंग सोसे पुनबो गुंतां चिसोक से चोसपा सोसे टीपा तां एग्जीक्यूटिव थुजमी गुंतां यां पो चोसपा जी बोता जाते नोक चोसपे नंगा श्यामी एसपी एजाज मालिक लिकिरी एसडीएम खलाजे बीएमओ खलाजे डिग्री कॉलेज तंग जिंदा चुगनीस पे लोपटा काय लोपसी गुन स्किरबुचन खलाजे तंग सिंगेला लोग वीडियो गुन खलाजे जीडीओ तंग जन डेलो लस्कुंग सिर पनबो गुन तंग सिसोक सि सोसपा सोसे थिबा तंग खाकुर पागुन अतु सजाते नो यांग अर्जोंग नंगा ड्रग्स सि तोरसा तंग डेलते छोलतास नाचो सिगी स्कोरला ट्रोजुर जाते नो इतु एस पी एजस मालिक सरजों नंगा ड्रग्स तंग डेलते स्नास्तंग स्नास लुक्स कुनी स्कोरला शादा जादिनजिक मीमांस कुनी नंगा इ स्कोरला हागोस पेलचे सिर गोजदम योतखान गुन सोसपा इशारा जातेनोक सोसपे रिंग्सला श्याम युलजों सि गोबा गुनी सोसपे थिपा नांसो सि थिपा जोन बातांग जन सोसपा सोसे थुजमी गुनी श्याम रजों नंगा ड्रग्स सि तोरसे सेल्थास फिंगचे तांदेलते रंग रंग छोर ने स्पासपे गुन साला जातेनोक इतुस अर्जों स्पोन कुंजेस आंगमोस श्याम रजों नंगा ड्रग्स सि तोरसा गुनी सेल्थास फिंगचेजला लास्कुंग सामे रोजदेल तांगयाम पो छलास जाचेस तांग सिसो सि सोसपा सामे रोक्स जात गोशे से गाय शेत साला जाते नोक इना तुजला रजोंसपोन इस मीमांस कुंतांग शमिक्सा ले जुनु फोमो गुनला ड्रग्स सी नोस्क्यों तांग एमर्जेंसी नंबर 112 स्कोरला हागुस पेलचेजला लापचा साला जाते नोक श्रीलोन नरेंद्र मोदी शेदाजत खान नांगजिन युली पोमो गुनिस फाइनेंशियल इंक्लूजन ने तांगस्ते सोंसदे यानला फेचेस योनतान खामजे खांपे छाखलास सांगदा जाचेस सालियांस सानजिक तंग जुंगशुल जाचिस थेते लास्का सोसेनांगा छाखलास गांगशन जादिन इनोकमलतोक श्रीलोनिस चिचोक स्पेल लामलग्युते शेदाजत खान नांगजिन युली पोमो गुनिस ड्रोन टेक्नोलॉजी चोक सी तुस सोमे जोथाप कुन कोलिन युचिस पिजास्ते खोंग कुनला स्काप्स सोमा मंगपुजिक इ लाम एम्बेनजिक तंग इनोकमलतो तेना चोकलास कुजास मोदिस बुतखानि लोचुगनि सिरिंग्सला जुंगि चोकने पोमोगुनि उठित जादिन युला यरगेस एखोंचे सि थोका छाग्लास जातखान गुनि स्कोरला शादा जात
1: 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है।
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
1: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
1: महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो।
2: 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है।
1: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे।
0: ले डायरिस्टोना सिका लद्दाख सी लोपटा सोसे गिरगन गुल्ला पीएमई विद्या डीटीएच टीवी चैनल गुन अर्ग्युते लोपटुक गुल्ला योनतान लोपजों सालचे सी थाबलाम गुन स्कोरला जेख जी जोंदार असालिन योत खानबो जगो जिक तंग यंपो थोन तेनोक इतुस लद्दाख उजुंग हजदे थोरिम योनतान लास्का गेटुंग सी बानु परवास कुंडन स्वे चुला थुजा जा तेनोक यांग जदगवा सुंगशात सालिन जिक ई डिजिटली रोस कुन ग्युते लद्दाख सी लोपटुक गुंतांग मिक्साली गमिल थारिंग सी लोपटुक गुल्ला तुस सोमे योनतान गुन थोप तुप चे जिनोक मोलतोक जदगो स्कप्स जोंदार लेन खान गुनिस जोंदार रिंग्स ला जतखानी लोकन्यान रिगां जिग्रा फुला जातेनोक यांग जोंदार सालकान गुनलार सिवा फुला जातेनोक इ नासुलगुन निजरां हंगेसला आकाशवाणी लेने सांचेजला फुलिंजिक ताइन
3: Gelion Storix Tenas Kang Lenanga, Nistong Nishur Saruk Sabduni Academic Session Ifia, MCISM NEET Gute, Bachelor of Sovarikpa, Medicine and Surgery Nanga, Undergraduate Course Ifia, Admission Lenches La Restos Pagunikane, Online Sianju Len Injikta Inok, Sianju Pulches Sistans, Mels Ses Nishur Sangane, Junit Ses Nishur Sanga Borte Yotenok, Restos Pagunla, Junit Ses Jongane Sumchu Supa, Entrance Yuk Sifia, Advanced Preparatory Coaching Ang Borches Inok, Yanjulel Ses Churgi Jaga, Entrance Yuk Kun Chachesinok, Tugdo Dutkan Restos Paguni, Junit Ses Nishur Sanga Supa, www.cihts.ac.in Nigashkote, Online Registration Zat Tupchesinok, Jipsalifia Sabutanga Yutkan, Soarikpa Laskun Laskunyan Chesinok.
0: Nubra Erzong Nanga, Lamdon Interschool Sports Meet Ijuintang, Lamdon Lopte, Yanlak Sose, Loptukuniparla, Bansal Adranzur Jigitarik Zateno, Kilometer Suntang Pezami, E. Bansal Adranzur Tarikzachis Mijibo, Drax Sish Noskion Guniskorla, Hago Spelchistang Yampo, Loptukun Itsoxis Nyosgan Gune Tarringa Borches Ponok, Nubre Erzongspon Mukul Benivalis, E. Gantarringme, Bansdurla, Chadarstante, Lamchu Zateno, Yam Zadwa, Sungshat Salinjik, Junu Pomogunanga, Drax Sish Nyosgan, Chenyot Kanbeka, Skyomo Munchuginjik, Nubra Erzongbo, Draxir Kalas Metkani, Yuljon Shik Gurchukchesla, Jungtang Zgeri Sospa, Guntang Mimang Sangme, Rosdel Yongoshesika, Shet Salazatenok, Stingne Angrim Lonkan Gunla, Solraskun Zgosesaltenok. Akashwani Chokne, Chisola, Japstos Ganshan, Juazat Kan, Mimanskun Lar Siva Pulches Tang, Kong Chala Zampogun, Mimanskun Langon, Chukches, Mixitan Yampo, Mixale Digrim, Jik Sanchez La Pulinjitanok, Dringi Kapenanga, Nistong Ishur Sarugi, Padmashiri Zemstak Namskan, Guru Sangyusang Poengeris, Luxoli Rolianskun, Miams Kongpel, Zachesitoga, Chalas Ganshan, Zatkan Guni Karik, Sanchez La Pulin.
4: वो इंसान जिसने धड़कनों की लय को जिंदा रखा गुरु सांगिसांग पोंगनेर पद्मश्री 2026

0: एक समय था जब दुनिया एक अलग ही लय पर चलती थी, जो तालियों के लिए नहीं निभाई जाती थी बल्कि पहचान बनकर जी जाती थी। पीढ़ियों तक नगाड़ों की गूंज नागा लोगों की पहाड़ियों और दिलों में सुनाई देती रही, लेकिन क्या होता अगर वो धीरे धीरे खो जाती। मार्च 1945 को एक छोटे से आओ नागा गांव में जन्मा एक बालक सिर्फ संस्कृति को देख नहीं रहा था बल्कि उसे विरासत में अपना रहा था। समय के साथ सभाएं कम होती गईं, गीत भुलाए जाने लगे और नृत्य खोने लगे। समृद्ध आओ नागा विरासत धीरे धीरे मिटती जा रही थी। तभी गुरु सांगसांग पोंगनेर ने अपने जीवन को इसके पुनर्जीवन के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया।
1: बचपन से ही मुझे अपने लोगों के गीतों और नृत्यों से गहरा लगाव रहा है। मैंने ये सब अपने पिता, दादा और गांव के बुजुर्गों से सीखा।
0: उस समय कोई लिखित ग्रंथ नहीं थे, सब कुछ मौलिक परंपरा से आगे बढ़ाया जाता था, जिससे ये कार्य और भी कठिन हो गया था। जब नई सोच ने पुरानी परंपराओं की जगह लेनी शुरू की तो उन्हें एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ दी, बिना किसी आर्थिक सहारे के गांव-गांव जाकर प्रस्तुतियां देने लगे, जिसके लिए समाज ने उनका अक्सर उपहास भी किया।
2: जंस्कारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंगा लोपची डॉक्टर एमजाद अली लाफ्तनी नंगा सांडे लाजगुल जिक सुला जाते नुख इतुस कॉलेज ची गेरगन लाशित बतां लोपटो गुनिस कॉलेज ची कैंपस तां निखोरी नासागुन लक्ष्म जाते नुख ले तां निखोरी नासागुन नंगा दिरिंग जरा जमशिगा लुंगजाक तां न्यामपो ट्रक्चर तां नासा थोनपो गुनिका सेरारु शुक्षण बापसे नुख नामले लस्कुंग सिंगे स्टोन पा सोनम लोटो से शिराजत खन नांग जेन योंगचे शनि जापमांगी सिरिंगला लदाख सिनांगा नामला खरखो लुशे से छोत अस्तना जाते तनो तोरियांग
3: नमजामा ग्यालाजु ग्लुचे नुख सबा छुबे लुशे दु नांग जात जैसी ग्यालाजु दु तचि नमना तोरि जाग नि स्ट्रुंग नमजामा ग्यालाजु मिनुक ले सबा छुबे इन नांग तने छरपा मंगपो तांग छिस मिनुक मिउन जिगोज मिनुक ते जाग मंगपो जिक तने ननि ता तो तने जाग मन चिक नि कंटिन्यू छरपा तांग छिस मिनुक इन नांग जुंग जुआ तैचि छरपा तांग तांग छि परे निमा नो छि दु तचि नांग नमजा जैसी गा ते इरेटिक यानी सबा छुबे लुछि दु तोरि नांग सुपा लुछि दु तेने जे दाइने 15 इंतांस कन 20 तारीख सुपा तेने आम तौर पर नमजा गति लगा संग मा ठीक लुछि दु तेने काले जाते सात पंग तेने ता चि कुले कुले कुले ग्याशे दु इन नांग ड्रिंक थोरे उन तेन सिलमोरी लुछि दु ले
2: सोजुंगी ची तंतन स्कूल लोन पो डॉक्टर एस जयशंकर इस जमलिंग का सोसनांगा डुली नियोत खान जेरलेन तंग न्योक्टा गुनी डुबडास नानपा बिंगचे शंगुनी गोथाप जाचेला रियल कप ची तंग ची परला जेरलेन योतखान गुनी का फंचुन सुंगदो सजाते सेल्थस पिंचेस जमलिंग स्टील दानी सोंडेली सिरका गुन असगा स्किल मेट पा डुल चुकचेस तंग रियल कप संग में रोजेल योंग गोशे जिका शेत चला जाते नोक डॉक्टर एस जयशंकर इस फिनलेनी नंगा कुल तरंता ट्रोक्स थेंग चुपजी पिनांगा खाक्तु जिंजिक रिगेल खाप चिक तांचिक पारला जेलेन रिग्यासिन योत खान गुनी जास्ते इबे ख्यात गानपा गुन निकोरी जन रिगेल खाप गुन लांग जुगुन इनों मलतो ले लुंटिन कान क्यूते लदाख सी नाचुल गुन सातो चुचोत और गु निमे चुचोत नि तांस कर्मा खाप चुंगा पितो गो चुचोत खातांग पितो गो चुचोत और दुन तांस कर्मा चोंग गुनी का संचेज ला पुलिन जिक तानो मीमांस कुनिस लदाख सी नाचुल गुन फेसबुक यूट्यूब तांग एक्स कुनी कांग AIR न्यूज लेर ग्यू त्यांग सान तुपचे जो तेनो आकाशवाणी लेनी तार नाचुल तोन का सतांग जिरांग इस डेलचा सनाजात
4: लादास चुक्सी इश्चि चुक्सी नंगा मीमांस कुनेस छंग इंगेस मिक तंग इबो कोलचोत तंग जसिका गक्जा तंग गुस्योत खनबेका स्कूलमा तंग हागुस पेलचेसी ला स्कूल तुजगुन ला शुलिन जुक्सतेनोक इंशकांग नेथुप लादासी फिया उजुंगास्ते चुक्सने एक्साइज पॉलिसी स्पेला जात खनबे जास्ते इश्चि चुक्सी मीमांस कुने नंगा थेचोम नमस्तोक तंग शुगजी मंग पोजिग्योतेनोक चिस्तांग ग्यालखा गजिक तंग उजुंगास्ते काजुगजिक इननंग तेबेनंगा योंगो चुक्सला रेवेन्यू स्पेलचेसिपिया थपचुस मंगपुजिक अटुब चुगानोक तेथ्वा एक्साइज पॉलिसी अंग योगानोक काबुनांगजिन युलखा गजिगे नंगा छांगे रिक्स टोबेको तंग सासनुम चोक्से स्पुस्का कागुन चोंगचेसिका जुंगिस छिरका जिक तंग छाजिक चुआ चादानोक छंग थुंगचेस चोक्सी लोप्स गानपा गुन मेतखान चोचेसी चुंडु सिखागे नंगा चिचोक्सिल दानिका लासगुल ग्या छिनमिल दानिका शुलिन योतखान गुन मीमांस कुन ई श्नोक्सगान ने थागरिंगा बोचेसी फिया शुलिन जिगेनोक काजुगा छंग थुंगचेस पेजास्ते चिचोक्स थुक्षेस kimchang thukshes khamsdeka noshkon lepches ra roste motor khollo shulches ni job tangste mi tang to do simchan guni shoki ka kut kha lepchukches jos naskaps ashkyomo chan mangpojik yong khanbu delu changmi hagote ithoga thapchus kazukjik dubat nang rangrang susui thuksam nantan salches tang kazuga changni ngespa kun gish chawa in lotus rabrip tanpa nyams parichet lus tang simsla notpa shket paregur khaspas spangjar sungspa te ino sungajat khan nangjin te thoka thuksam nantan salgosteno ladakspo gyagari nanga timzo tsokspa metkhani ujungaste thnge nangne chik inok timzo tsokspa metkhani ujungaste gun nangloni uthi dinanga home ministers advisory committee tang ujungaste shichkung junbe uthi dinanga administrative advisory committee gyute jungshul jadanok ibeton takpo ujungaste shichkung junbe laga wangcha mangpo jig yotenok yangnyampu nyampo khongika lasgan gunang chinmo tangas chinte phokte yotenok Kazuga ladaks ujungasde nanga daksirinsla mimang sildams khani timzo tsokspajik medachik thapchus chijik zatnang tebu tantan tiktik tang ospa chanjik yongchesla ibeka tosleng chokhan hltatok chadlen khan tang ibeka zopskur tang chukhanjik medpasang ladaksinanga excise policy dupchugachik ibe spuschat tang zui chadgun Manga kakchan ashtanpo tangya la yung goshespo maungspe du sipiang ma kakchan gyurano. Ladak sipia excise policy kazug jik yung gos jukhanbeka kazuga ladak spo saji tongner gyachan nangpe shesrik tangladan kantang namshis kakspo chan yuljong jik gyurtiyo chespe jaste excise policy nanga chang kol chespo lukshuli tsirka jik in nang I thapchuspe jaste miksali Jonchkes guni nanga I lobs nganpa wor gyashe se jikspang yote ino. Le zangskar nubra tang jangtang tsoks yuljong susi nanga I toga tapchus gun tsoks kyungtubjes metpa ino. Kazuga ladaksi nanga mimang sildamskan timzu tsokspa jik metpa sang tapchus gun zatachik shmang eldanika chosluk susi ushkong gun ama tsokspa gun susu rangtadi tsokspa gun ngasde tuzmi gun tang mimang sildamskani tuzmi gun nyampu panchun tapchus zat goste ino. Ngetup shichkong junbe ladak sipia excise policy ngistong ishur saruk tang delte ka khyap aspe la jate yot khanbe nanga shate yot khan nangjin nam jik eshchizuk si nanga ospa nangjin la chang espuska thup machuga kakdum shanti tanga jik mimang skun drugs choks tukza si riks kun tang janyang nyochui riks chapshen gun choks la chad juanok tepia itoga tapchus gyalshus po daksa tapchus sumi nanga choste yot khan nangjin nyochu yangna chang thup jukjes po chirka chanjik tang itoga timsi thoknyang lamga gun borte yot chesbe noshkal bo nyunga chachis inok juste yot enok ta kazuga ladaks po skoryang sish tona zizik gyurte yot Chespejaste, Luika, Yultang, Chigal, Yuldu Sosunis, Koreans Pas, Tungtak Mongpojik, Ladak Slash Kodenjiginok, Yang Tapjus, Galajiginanga, Skoreans Baguni, Changi Goz Dombo, Hotel, Homestay Tang, Trekking, Hub Guninanga, Shkups the Borses Tang Yampu, Ladak Si, Chizuk Sinanga, Nase Mimanskula, Tsotmidla, Changtang, Nyochu, Tungchesne, Shkups the Borses Bang Inok. Kazuga daksa ladak sinanga timzo tsokspa jik metpasang jungshul pe choksne I tokpeka shtsar tsiruk borshches tang tsirka chisal nangsal borshches I timz jik metpa inok tepia changi tsongkang peches tang delte I auction tang ches nyochus puska guni kerkyong ika digital gyutel tatok borshches tang licensing gun online choste paksuk gakches tang revenue leakage gun goktaps cho goshes gunang kakchan gyurteyo tenok jyonok excise policy choches janang gyu chanjik ladak sinanga excise revenue yong khanbui khakchik ladak se chi chok sinanga drug de-addiction sonas pages junchkes guni pr salyang si ldani zo dubchukjes pomogun wangcha chan chojes chos chi chok si phande laskha guni nanga dosung tangs de thapchu si dubdas thongsal chan chojes bo in jono ladak si sacha thagringi zangskar tang jangthang choksi yuljons guni nanga le tongkher tang space de gunor paljuri nastang susu yot khanbi danika license fee tang rent pricing gunang jikchungs metpa susu chogos te nok jono ta thapchus gyala jigong je sipia ibeka rangwang tharkel chani tatok bor khan zde yongoshes mimang si shugji selkhani las de yongoshes tang tus tusika excise performance score la mimangsla rgus chajugo shesgun khakchan gyurthiyo teno আকাশবাণী লেনে তা দিল সাথন
5: ngaje akashwani le ne jwen jek tan pito chu chu don nas karma sum chu sog ni chad ka sa ta tundu bang mo tan cheng dol kar gune sal ka ni lyrics sanat

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: टुंडु बांगमोतांग सिंह डोलकर गुनी सलकनी इलुबांग सनाजात।

0: को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के

0: तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री रनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकीलों न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस